0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 6 बज्यो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड।
2: Texas International College announces registration open for plus two science.

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्न को ठीक चार बजे

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: सुरक्षित भविष्य को लागी जीवन बीमा गरौं। जीवन बीमा का लागी राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी ने रोजौं। न्यून बीमा शुल्क में अधिक बोनस दर रहेको नेपाल सरकार को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त एकमात्र जीवन बीमा कंपनी बीमा को क्षेत्र में विश्वसनीय नाम राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी साबिक को राष्ट्रीय बीमा संस्थान प्रधान कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं।
2: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो एनआरएन 99.1 सबैका लागि सूचना।
3: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।

को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जीऊ।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 7 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: हाड़ चोरी तथा नस संबंधी रोगी मध्यनजर करते इंडिया को एपोलो अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट उच्च विशेषज्ञता गंडकी मेडिकल कॉलेज का प्राध्यापक डाक्टर ईश्वर शर्मा कणेल
2: यही जेठ 16 गते शनिवार
3: बागलुंग मेडिकल हल कुस्मामा आउँदै हुनुहुन्छ
4: त्यसैले हाड भाँचिएका हाथ खुट्टा दुख्ने घोड़ा दुख्ने सुन्निने नसा दुख्ने पोल्ने नसा च्यापिएका खुन्चिएका गाँठो परेका ढाड कम्मर दुख्ने बाथ युरिक एसिड प्लास्टर गर्नुपर्ने गरेर बाङ्गो टिङ्गो भएका तथा जस्तोसुकै हाड जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क राखी सफल उपचार गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ
3: साथ ही उक्त दिन निःशुल्क फिजियोथेरापी को व्यवस्था छ डाक्टर आउने मिति
2: यही जेठ 16 गते शनिवार
5: यहाँ हरेक दिन होल बॉडी चेकअप मधुमेह परीक्षण HbA1c जांच लिपिड प्रोफाइल लेवर फंक्शनल टेस्ट यूरिक एसिड बाथ टाइफाइड गैस्ट्रिक एवं मोटोपन को परीक्षण रगत गृह एवं दिशा पिशा परीक्षण गरिने का साथ ही अत्याधुनिक मेसिन द्वारा धौलागिरीमा नै पहिलो पटक थायराइड एवं भिटामिन डी को जांच गरिन्छ
4: स्थान बागलुङ मेडिकल हल तथा सिटी फार्मेसी बड़गांव
3: संपर्क फोन नंबर 0674 2027
4: 24027
3: संपर्क मोबाइल नंबर 98572597
4: 98511 88918

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।